मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास के 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। इसमें आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने

0: 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। विचार मंथन।

डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा है, शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है जिसका उपयोग आप इस दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं।

ये था आज का विचार मंथन। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए रमेश यादव की ये देशभक्ति रचना समूह स्वर में।

भजन में भाव हैं, जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बढ़ती है विभिन्न अवस्थाओं में वो संसार के झंझटों में फंस जाता है। केवल एक काम करना वो भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना, हरि का सुमिरन करना। तो किस अवस्था में कौन कौन से झंझट हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है,

आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए अगली भक्ति रचना मधुप मुद्गल के स्वर में।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे चिंतन, आलेख डॉक्टर नरेश ज्योतिषी का है।
1: सत्यमेव जयति, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्याचरण और सत्य भाषण हमारी संस्कृति का संदेश है। सत्य की महिमा अनंत है, यहाँ तक कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य सर्वदेशी और सार्वजनीन है। विश्व के सभी धर्म सत्याचरण की शिक्षा देते आए हैं। हमें सत्य का संदेश राजा हरिश्चंद्र के जीवन ने दिया। उन्हें सत्यवादी कहा गया, सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्य का आचरण उनके जीवन में रहा। राज्य चला गया, उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। अर्धांगिनी गई, प्री इकलौता पुत्र भी छोड़ गया, पर उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। राज सिंहासन में बैठना छूटा और श्मशान के प्रहरी बन गए, पर सत्य का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। पुत्र रोहिताश की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। शव को लेकर पत्नी तारामती पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान पहुंची। जब तक तारामती ने अपनी साड़ी को आधा फाड़ कर श्मशान के नियमानुसार कर नहीं दिया, हरिश्चंद्र ने उसे संस्कार नहीं करने दिया। वे सत्य की कठोर परीक्षा में भी उत्तीर्ण होते रहे। एक और कठोर क्षण आया। तारामती को किसी अपराध का राजदंड मिला, उसे आरे से चीर कर दो भाग में कर देने का। दंड देने का समय आया। घूंघट डाले एक नारी आरे के नीचे खड़ी थी। ऊपर विशाल आरा, जिसे चलाने के लिए हाथ से पकड़े हुए खड़ा था श्मशान का वही प्रहरी हरिश्चंद्र। अनायास किसी ने कहा, नारी मृत्यु पूर्व अंतिम इच्छा क्या है? नारी ने घूंघट उठाया, सामने पति सत्यवादी। गर्व और प्रेम से नारी के नेत्रों से गंगा यमुना बह निकली। सामने पत्नी को देखते ही हरिश्चंद्र का हृदय कांप उठा। इतनी कठोर परीक्षा, आंखें बंद हो गईं, हाथ ठहरे, फिर हाथ आगे बढ़ गए। क्षण भर में समस्त भौतिक जीवन समाप्त, पर नहीं, हरिश्चंद्र ने नेत्र खोले। सामने वरद मुद्रा में खड़े सत्यदेव, सामने खड़े थे मुस्कुराते ऋषि विश्वामित्र, सामने हाथ जोड़े खड़ी थी राजमहिषी तारामती, हंसता खेलता पुत्र रोहिताश और संपूर्ण राज्य। सत्य कठोर नहीं है। सत्याचरण में ऐसे क्षण आते हैं जब हम भयभीत हो जाते हैं, किंतु ऐसे अवसर क्षणिक होते हैं। अंत तो आनंदमय ही होगा। एक और बालक का था, कुछ वर्षों पूर्व हुआ। बचपन में उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा और सत्य बोलने का निश्चय किया। सत्य का आचरण उसने किया। इस सत्याचरण ने उस सामान्य से बालक को विश्व वंद्य बना दिया। हम उसे महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। उसने भी कहा है, सत्य ही ईश्वर है। हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में सत्याचरण का महत्व विशिष्ट है। वर्तमान की अधिकांश समस्याओं की जननी असत्याचरण है। यदि हमें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को कम करना है, सामाजिक समस्याओं से छुटकारा पाना और तनाव मुक्त रहना है, तो सत्याचरण करना पड़ेगा। ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी अनिवार्यता है।
0: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर नरेश जोशी का था और वाचक स्वर माधवी येंडे का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष विषाद सुख दुख सब कुछ भूल गए। स्नेह के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गिरे।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस गान सुन रहे थे। गायक स्वर सुरेश वाडेकर का था। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है कृषि समय की। इसमें आज आप सुनेंगे मेड़ पर वृक्षारोपण।
1: मेड़ों पर वृक्षारोपण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो कृषि भूमि होती है वो तो कम होती जा रही है, और उसमें यदि पेड़ों को या वृक्षों को लगा देंगे तो उसमें फसल का क्षेत्र कम हो जाता है। वनों की कमी भी होती जा रही है शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और मौसम बदल रहा है और जनसंख्या दूसरी तरफ बढ़ रही है। इसकी आवश्यकता के लिए जलाऊ लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी, लघु वन उपज, औषधियाँ, रोजगार और खाद्यान्नों की बढ़ती खपत की पूर्ति के लिए मेड़ों पर वृक्ष की जरूरत अधिक पड़ती है। वृक्षों से कई लाभ और भी मिलते हैं, जैसे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, भूमि के कटाव को ये वृक्ष रोकते हैं और पर्यावरण को सुधारते हैं। सबसे पहली बात तो यह रहता है कि वृक्षारोपण आपको कैसे करना है, कब करना है। तो 50 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बहुउद्देशी पौधों की नर्सरी की व्यवस्था कर लें आप। वृक्षारोपण एक और दो बारिश होने के बाद इस माह में आप कर सकते हैं। बहुउद्देशी वृक्षों को लगाएं ताकि आपको कई फायदे हों। ऐसे पौधे लगाएं जिनको ईंधन

0: रूप में उपयोग कर सकते हैं, पशु चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, खाद्य या फलों के रूप में उपयोग आ सकते हैं, ये इमारती काष्ठ के रूप में उपयोग आ सकते हैं, लघु काष्ठ के रूप में जैसे कि कृषि औजार जिससे आप बना सकें, भूमि संरक्षण के लिए उपयोग कर सकते हैं, गोंद उत्पादन आदि के लिए उपयोग कर सकते हैं, ऐसे पौधे आप लगाएं। अधिकतर ये सभी उपयोगिता पूरी करने वाले कुछ वृक्ष हैं जिन्हें कि हम बताना चाहेंगे, बबूल, सुबबूल, खैर, पलाश, शीशम, बांस, सफ़ेद सीरिस, खमेर, पॉपलर, कोहा, इन प्रजातियों को आप मेड़ों पर लगाकर लाभ कमा सकते हैं। अब जैसे कि वृक्षारोपण का कार्य करना है तो अभी समय बहुत अच्छा चल रहा है, आप 5 मीटर बाई 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि गड्ढों के बीच में दूरी 5 मीटर होनी चाहिए और पंक्तियों के बीच में भी 5 मीटर दूरी होनी चाहिए, आप 45 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा और 45 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा तैयार कर लें। गड्ढे की मिट्टी बदलकर उपजाऊ मिट्टी और पकी हुई गोबर की खाद का 1:1 मतलब बराबर बराबर अनुपात में मिश्रण तैयार करें और गड्ढे को भर लें। जैसे ये महीना आरंभ होता है इसमें पॉलीथीन में पौधों की पॉलीथीन निकालकर बीच गड्ढे में रखकर अच्छी तरह से खाद और मिट्टी के मिश्रण से डालकर पौधों को चारों ओर से अच्छी तरह से दबाकर पौधों का रोपण कर दें और चारों ओर से चौड़ा और बड़ा थाला जरूर बनाएं ताकि आप सिंचाई और अन्य कार्य कर सकें। ये ध्यान रखें कि पौधे के रोपण के पहले गड्ढे की मिट्टी को बदलना चाहिए, कम से कम 1 माह तक गड्ढे की मिट्टी को सौर ऊर्जा द्वारा उपचारित करें सूर्य को दिखाकर, ताकि इस गर्मी से उसके अंदर रोगाणु और खरपतवार के बीच नष्ट हो जाए। पौधों को उचित गहराई पर ही लगाएं। शीघ्र वृद्धि के लिए प्रति गड्ढा मिट्टी और पकी हुई गोबर की खाद के अलावा दवा 20 ग्राम यूरिया, 20 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 10 ग्राम म्यूरेटा पोटाश भी पौधा लगाने के पहले मिला दें। पौधों के चारों ओर 1 मीटर की परिधि में लंबा और चौड़ा थाला अवश्य बनाएं। मेड़ों पर वायुरोधक पट्टिका के रूप में, जिससे कि खेतों को लू से बचाया जा सके और साथ साथ ठंडी हवाओं से भी बचाया जा सके, इसके लिए 5 मीटर की दूरी पर पंक्तियां और 5 मीटर की दूरी पर पौधे एक कतार में केवल पूर्व पश्चिम दिशा में ही लगाएं, क्योंकि जो हवा या वायु का प्रवाह होता है हमेशा पूर्व पश्चिम में ही होता है। वायुरोधक पट्टी के रूप में आप आंवला, नीलगिरी और नीम जैसे वृक्षों को कृषि फसलों की मेड़ों पर रोपण कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो छाया का प्रभाव हमें कम करना है, फसल पे ना पड़े, इसलिए वृक्षारोपण उत्तर दक्षिण दिशा में ही करें, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम में छिपता है, इस कारण इसका छाया का प्रभाव भी हमारी फसलों पर नहीं आएगा। शुरुआत में 3 से 4 बार गुड़ाई करके खरपतवार निकालते रहें और शुरुआत में ही सूखे की स्थिति यदि हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई अवश्य करें। इतना ध्यान रखें कि भूमि में नमी बनी रहे।
1: कृषि समिति के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मेड़ पर वृक्षारोपण, जानकारी दे रहे थे विपिन यादव। मीडियम वेव 374.5 मीटर पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे आज दिन भर में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज प्रातः 10:10 पर विश्व दर्पण और रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। प्रातः 9:15 पर गांधी चर्चा, जिले की चिट्ठी 10:00 और रात 8:00 सुर्खियों में, ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार प्रातः 9:00। इसमें आज हमारे कलाकार हैं राजा राम विश्वकर्मा। 10:05 पर वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं और फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा 10:20 पर। दिन में 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।

शाम की सभा आरंभ होगी आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे। 6 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लोक संगीत 6:30 पर कलाकार है मनमोहन शर्मा। 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं तापसी नागराज। किसान भाइयों का नियमित कार्यक्रम होगा शाम 7:21 पर, इसमें आप सुनेंगे धान में समेकित पोषण प्रबंधन। जानकारी देंगे डॉक्टर आर एल मेढ़ा।

आपके SMS आपके गीत रात 9:30 पर रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद अब्दुल लतीफ खां का सारंगी पर बजाया राग ललित। और फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन 10:30 पर।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बताना चाहेंगे, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार आज प्रातः 9 बजे। इसमें आज हमारे कलाकार हैं राजा राम विश्वकर्मा। शाम 7:21 पर किसान भाइयों के नियमित कार्यक्रम कृषि जगत में आप सुनेंगे धान में समेकित पोषण प्रबंधन, जानकारी देंगे डॉक्टर आर एल मेढ़ा। आपके एसएमएस आपके गीत रात 9:30 पर। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद अब्दुल लतीफ खां का सारंगी पर बजाया राग ललित। ये थे हमारे आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। समाचार कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर्नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जागृतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वैब्रेंट विलेजेस् इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमाप्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणाम् अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासंगिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में
3: योगदान

0: योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर कुल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अच्छी बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne yesterday. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
0: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है। और फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऑस्ट्रेलिया की राजकीय यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। तीन देशों की इस यात्रा में श्री मोदी अपने अगले गंतव्य न्यूजीलैंड के लिए रवाना होने से पहले आज मेलबर्न में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने पर व्यापक चर्चा होगी। इसके पूर्व प्रधानमंत्री ने कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के सड़क अधोसंरचना विकास में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपये की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा। ये परियोजना उज्जैन, दक्षिण घटिया, नागदा, खाचरौद, आलोट और जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 2 वर्षों में पूर्ण होने वाली इस परियोजना से लगभग 35 लाख आबादी तथा 62 ग्राम प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग के निर्माण से उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा एवं तेज संपर्क मिलेगा। इसके साथ ही इंदौर, भोपाल एवं मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी और अधिक सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल शाजापुर जिले की काला पीपल तहसील में आयोजित एक किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आधारभूत विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 55 लाख हेक्टेयर से अधिक पहुँच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा और 1,000 रुपये हर साल 1 माह तक दिया जाएगा।
2: जो प्राकृतिक खेती करेगा आगे जाकर के 1 साल तक 1,000 रुपया महीना किसान को देंगे ताकि वो प्राकृतिक खेती करे। ये हमारी सरकार की योजना है। गौ माता के लिए जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा और 40 लाख की स्कीम बनेगी तो 10 लाख रुपया अनुदान उसमें भी देने वाले हैं।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कुशल कार्यबल, मजबूत संस्थानों और नवाचार के कारण भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों जीसीसी के लिए सबसे पसंदीदा देशों में शामिल है। नई दिल्ली में सीआईआई राष्ट्रीय जीसीसी बिजनेस समिट 2026 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 2100 से अधिक जीसीसी हैं, जहां 23 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। इन केंद्रों से

साल लगभग 10,000 करोड़ डॉलर का राजस्व प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र इंजीनियरिंग अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, वित्त, उत्पाद तथा डिजाइन और डेटा विज्ञान को एक साथ लाकर नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्यूसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। ओमान यात्रा पूरी करने के बाद वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। स्पेन के मैड्रिड में तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और कीर्ति शर्मा रिकर्व मिश्रित स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्हें चीन से 3-5 से हार मिली। अब कांस्य पदक के लिए उनका मुकाबला इटली से होगा। वहीं भारत की पुरुष और महिला रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई है। हालांकि भारत की महिला कंपाउंड टीम पहले ही फाइनल में पहुंचकर अपना पदक पक्का कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में जनगणना से संबंधित हस्त पुस्तिका तैयार की जाएगी, जिसके लिए लगभग 150 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। वहीं इंदौर के ही किला भवन शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश मेले का शुभारंभ हो गया है। खंडवा में आगामी 2-4 अगस्त तक खंडवा गौरव दिवस में पार्श्व गायक विनोद राठौर को प्रतिष्ठित किशोर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम दत्तीगारा में कृषि विभाग ने अमानक बीज उपचार दवा बेचने के मामले में डीलर और कंपनी संचालक के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया है। झाबुआ, थांदला और पेटलावद में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आगरमालवा जिला सहकारी विपणन संस्था को वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। कटनी में आवास प्लस 2026 सर्वे के तहत तैयार वोटिंग लिस्ट के फाइनल करने और उसके वेरिफिकेशन के लिए 2 दिवसीय ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने निकायों की आय बढ़ाने के लिए नवाचार साझा करने के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया गाड़ासरई के बिरासनी शिशु विद्या मंदिर का औचक निरीक्षण करने पहुंची। नीमच जिले के 105 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की तय मानकों के अनुरूप संचालन जाँच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल ब्रिस्टल में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ अपनी T20 सीरीज जीती है। वहीं मौसम में प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और भोपाल में कल भी दिनभर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने ग्वालियर, गुना, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर और होशंगाबाद जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4-लेन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है। और फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। पेश है गुड मॉर्निंग जबलपुर।

गुड मॉर्निंग जबलपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं कहते हैं, पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं वो उतना ही मजबूती से खड़ा रहता है। ठीक वैसे ही परिवार की जड़ें उसके बुजुर्ग होते हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम नई तकनीकों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जीवन जीने की असली कला अब भी बुजुर्गों के अनुभवों से ही मिलती है। वे केवल उम्र में बड़े नहीं होते, बल्कि अनुभव, धैर्य और जीवन जीने की सीख का चलता फिरता विद्यालय होते हैं। समय बदलता है, तकनीक बदलती हैं, जीवन की रफ्तार भी बदलती है, लेकिन कुछ बातें कभी पुरानी नहीं होती, जैसे कि माँ की ममता, पिता का साया और बुजुर्गों का अनुभव। किसी ने क्या खूब कहा है, घर ईंटों से नहीं बनता, घर तो रिश्तों से बनता है, और रिश्तों की नींव को संभाले रखते हैं हमारे बुजुर्ग। बुजुर्ग किताब नहीं, पूरा पुस्तकालय होते हैं, बस उन्हें पढ़ने का धैर्य चाहिए।

गुड मॉर्निंग जबलपुर में अब वक्त है संगीतिका का। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बसेरा से। शब्द रचना गुलजार की है, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने और आवाज़ लता मंगेशकर की है।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सो योर प्लेस और माइन।
4: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
3: कॉन्डम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं संगीतिका। लीजिए अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में, आवाज मोहम्मद रफी की है और फिल्म का नाम है 3 देवियां।

बालिका वधू लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत अमित कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

लीजिए अब सुनिए गुलजार का लिखा गीत, राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है मासूम।

अभी आप सुन रहे थे राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार की आवाज़ में प्रियतमा फिल्म का गीत। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत। आर डी बर्मन का संगीत है, आवाज़ आशा भोसले की है और फिल्म का नाम है

लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में, आवाज आशा भोंसले, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की है और फिल्म का नाम है लावा।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजे है। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। अमरीकी

0: और इजरायली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की

0: हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: है।
1: कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे साहिर का लिखा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत दिया था SD बर्मन ने और फिल्म का नाम था प्यासा। लीजिए अब सुनिए OP नैयर के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म CID से।

दिल अपना और प्रीत पराई, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और आवाज़ लता मंगेशकर की है।

दस्तक लीजिए, सुनिए इस फिल्म का गीत। बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, आवाज और संगीत मदन मोहन का है।

लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है आराधना।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत आर डी बर्मन का है, आवाज किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: घंटे की खास खबरों का।
1: ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपये की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत किसानों को एक साल तक हर माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। प्रदेश में मानसून सक्रिय है, लेकिन तेज बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दतिया, भिंड, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर सहित एक दर्जन से अधिक जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। और ब्रिस्टल में मेजबान इंग्लैंड के साथ चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल रात भारत को 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बनाकर 5 मैचों की श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लोक रसधार लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं राजा राम विश्वकर्मा। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए कजरी

आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत, और कार्यक्रम के अंत में सुनिए राजा राम विश्वकर्मा के ही स्वर में वर्षा गीत।

इसके साथ ही कार्यक्रम लोक रसधार अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज हमारे कलाकार थे राजा राम विश्वकर्मा। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

अहिंसा की कसौटी ही ये है कि अहिंसक संघर्ष में उसके उपरांत कोई विद्वेष बाकी न रहे और शत्रु मित्र बन जाएं। दक्षिण अफ्रीका में जनरल स्मट्स के साथ मेरा यही अनुभव रहा। शुरू में वो मेरे कट्टर विरोधी और आलोचक थे, आज वो मेरे अन्यतम मित्र हैं। समय बदलता है और प्रणालियों का ह्रास हो जाता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंततः केवल अहिंसा और अहिंसा पर आधारित चीजें ही बची रहेंगी। असहयोग यद्यपि सत्याग्रह के शस्त्रागार का मुख्य शस्त्र है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सत्य और न्याय पर दृढ़ रहते हुए विरोधी का सहयोग प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। अहिंसक विधि का सार ये है कि ये विरोध को समाप्त करने का प्रयास करता है, स्वयं विरोधियों को नहीं। अहिंसक संघर्ष में तुम्हें कुछ हद तक जिस व्यवस्था का तुम विरोध कर रहे हो उसकी परंपरा और रूढ़ियों को मानना पड़ता है।

है, इसलिए विरोधी शक्ति के साथ किसी तरह का संबंध न रखना सत्याग्रही का ध्येय कभी नहीं हो सकता। उसका ध्येय तो उस संबंध का रूपांतरण अथवा शुद्धिकरण है। मैं असहयोग को इतना शक्तिशाली और शुद्ध साधन मानता हूं कि अगर इसका इस्तेमाल सच्ची भावना से किया जाए तो ये पहले ईश्वर के साम्राज्य की कामना करने के समान होगा, जिसके बाद सब कुछ स्वयं प्राप्त होता जाता है। तब लोग अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाएंगे। वे अनुशासन, आत्मनियंत्रण, संयुक्त कार्रवाई, अहिंसा, संगठन आदि उन सभी बातों का मूल्य पहचान पाएंगे जिनसे कोई राष्ट्र महान और अच्छा दोनों बनता है, केवल महान नहीं। असहयोग जैसा शुद्ध, हानि रहित और फिर भी कारगर साधन दूसरा नहीं है। विवेक पूर्वक इस्तेमाल करने पर इसके कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आने चाहिए और इसकी गहनता पूर्णतया लोगों की बलिदान करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। हमने ना कहने की शक्ति खो दी थी। सरकार से ना कहना निष्ठाहीन और प्रायः द्रोहपूर्ण माना जाने लगा था। सहयोग करने से जानबूझकर इनकार करने की ये तकनीक उसी प्रकार की है जैसे कि किसान बुआई से पहले जमीन की निराई करना जरूरी समझता है। कृषि के लिए जितनी जरूरी बुआई है उतनी ही जरूरी निराई भी है। फसल जब बढ़ रही होती है तब भी निराई की खुरपी किसान के दैनंदिन प्रयोग की चीज होती है। राष्ट्र का असहयोग राष्ट्र की शर्तों पर सरकार से सहयोग करने का निमंत्रण है, जो कि प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार और प्रत्येक अच्छी सरकार का कर्तव्य है। असहयोग राष्ट्र की ओर से चेतावनी है कि वो सरकार की प्रतिपाल्यता से संतुष्ट नहीं है। अहिंसक असहयोग आंदोलन और पश्चिम के ऐतिहासिक स्वाधीनता संघर्षों के बीच कोई साम्य नहीं है। ये पशुबल या घृणा पर आधारित नहीं है। इसका ध्येय अत्याचारी का सफाया करना नहीं है। ये आत्मशुद्धिकरण का आंदोलन है। अतः इसका उद्देश्य अत्याचारी का हृदय परिवर्तन है।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम।

0: योग सबका हक है।
1: योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है।
0: आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल।
2: श्रोताओं एक सूचना, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसे किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी भोपाल से
3: मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत।

दम मारो दम कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और ऐश किंग की आवाज में। लीजिए अब सुनिए एक पहेली लीला इस फिल्म का गीत उजैर जायसवाल की आवाज में। संगीत दिया है उजैर जायसवाल और अमान मलिक ने।

आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज में प्रसून जोशी का लिखा गीत। संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म का नाम है आरक्षण।

लीजिए अब सुनिए जयदेव साहनी का लिखा गीत, संगीत सचिन जयगर का है, आवाज सुनिधि चौहान और मोहित चौहान की है और फिल्म का नाम है शुद्ध देसी रोमांस।

0: mais.
1: दिल तो बच्चा है जी, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मोहित चौहान की आवाज़ में। गीत लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

लीजिए अब सुनिए जावेद अली और अनुपम आमोद की आवाज़ में इरशाद कामिल का लिखा गीत, संगीत दिया है प्रीतम ने और फिल्म का नाम है आक्रोश।